सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का

दिन है आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-2565-6560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-2266-6611। रेडियो SBS का वेबसाइट radiosbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हर सुबह की तरह आज सुबह भी भजन यात्रा प्रोग्राम आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरी हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

0: शिवा।
1: रेडियो SBS के जरिए सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम। हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन हर सुबह आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। मंगलवार का दिन है, भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है और प्रोग्राम भजन यात्रा जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में महेंद्र कपूर की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है बजरंग बली।

चले प्रोग्राम में अबकी बार ये खास सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो अशोक घरे की आवाज में पेश किया जा रहा है और एल्बम का नाम आई तेरी शरण में।

सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में अशोक घरे की आवाज में ये सुंदर सा भजन अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अब की बार ये

सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है। ये सुंदर भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया है। सुनने वालों, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। इसी तार की नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये सुंदर सा भजन, बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना। चले प्रोग्राम में श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज में। सुनवालो चले आज मंगलवार का भजन यात्रा प्रोग्राम से आरती भजन बस पेश किया जा रहा है और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

श्री हनुमान जी की आरती बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आश्रय उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सुनने वालों यहां तक आज मंगलवार का भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। खूबसूरत सा गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज में सुनकर और बेहद पसंद किया है। के और शिल्पा राव की आवाज में चले मिलकर ये गाना सुनते हैं। ऐ दो फिल्म बचना ऐ हसीनों।

रेडियो SBS की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई के और शिल्पा राव की आवाज में गाना भी आपने सुना आज की

चले प्रोग्राम में अबकी बार जुबिन और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, जरूर सुनते ही रहना।

बेस पे इसकी सर ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई विशाल मिटून और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना रेडियो एसबीएस की जरिए ये खास गाना जो पेश हुआ है एक तो फिल्म खुदा हाफिज फिल्म सड़क नंबर 2 अंकित तिवारी और लीना भोज की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में अबकी बार पेश किया जा रहा है।

करीना भोज की आवाज में ये गाना पेश की गई सड़क नंबर 2 फिल्म का नाम, फिल्म जो 2020 में रिलीज किया गया है। सुन वालों हर एक इंफॉर्मेशन के लिए 0325 65 65 60 पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। नया फिल्म भूल भुलैया नंबर 2

विशाल शेखर के शान और तुलसी कुमार की आवाज में गाना पेश की गए बागी नंबर 3 से अभी आपने सुना ये खास गाना। चले प्रोग्राम में अरमान मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं और गाना का बोल है

रेडियो SBS की सरिया खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी अरमान मलिक की आवाज में गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ूम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर के तकरीबन 8 बजे तक प्रोग्राम भजन यात्रा आपने सुना। 8 बजे से लेकर के तकरीबन 9 बजे तक कुछ खास मिले जुले नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं और यहां से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। एक प्रोग्राम जो हर सुबह आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश किया जा रहा है और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो पुरानी नगमे काफी पसंद

सुबह की वक्त घर पर और जहां पर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पर भी सुनने वालों गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ ये प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ तो यहाँ से पुरानी नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। बाहर का मौसम की ओर देखा जाए, खूबसूरत सुहाना मौसम है, धूप ही धूप का मौसम है और आने वाले दिनों आहिस्ता आहिस्ता काफी गर्मी सा मौसम होने वाले है। खासतौर पर आने वाले सप्ताह कहीं कहीं 3 देर तक 4 देर तक खराद होने वाले हैं।

यूएस में इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए हैं आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज क्यों हमसे पर्दा है यूएस में इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर।

हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकीस के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए एक और खूबसूरत गाना मुकेश जी की आवाज में

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये खास गाना बस पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-2-62-66-11 और हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-2-65-65-60। इसी तार की नंबर पर अपना सभी और सभी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं।

किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। आसनों भी देखिए, गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। उसी सुनने वालों है जो पुरानी नगमे इस वक्त सुनते हैं, जो रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है। चले गाना और किशोर कुमार की आवाज में पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार के आवाज में ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। चलिए हम आपकी बात ले चलते हैं फिल्म बारह धड़ी की ओर। उसी फिल्म का एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम है बारह धड़ी। फिल्म का नाम, खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। तो चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और लता जी के आवाज में।

मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर। अब की बार जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

रेडियो वेव्स भी इसकी जरिए ये खास पुरानी फिल्म का गीत आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है रेडियो एसबीएस की जरिए। अभी आपने सुना, चले अब की बार ये गाना की ओर। ये गाना भी काफी पुरानी है जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मुकेश और

रेडियो स्टेशन के ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मन्ना डे और लता जी के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। काफी पुरानी फिल्म का गीत अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है

किसी से होता है लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कुछ पुरानी नगमे आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और हमारे बहुत से सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम भी सुनते हैं रेडियो SBS का। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-22-66-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना फिल्म जानवर से बस पेश किया जाए।

0: पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सर
1: मैदान खड़ी
0: पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

श्री मोहम्मद रफी की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में किशोर और उषा खन्ना की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम जॉनी।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, खासतौर पर किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.nl उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड या कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई, काफी प्यार भरी गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए फिल्म जुगनू, उसी फिल्म का एक गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, सॉन्ग बाय द मैन विद द ग्रीन वॉइस, एक बार फिर से किशोर कुमार प्रोग्राम में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना गाना जो आपकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है किशोर और लता जी की आवाज में और फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। उसी फिल्म से आपकी बार ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी। किशोर और लता जी की आवाज में ये काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश और आरती मुखर्जी प्रोग्राम में होगा।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सिनेमा की सेवा में आरती मुखर्जी और मुकेश जी की आवाज में गाना भी आपने सुना। पुरानी फिल्म अनारी की ओर हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर से मुकेश की आवाज।

इस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना खासतौर पर स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में नीरज श्रीधर और श्रेया जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आपकी बार ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना कुमार सानू और साधना सरगम प्रोग्राम में।

रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारे सभी सुनने वालों जो खासतौर पर स्टूडियो की ओर तार किया है, आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले हम आपको ले चलते हैं एक गाना हरिहरन एन कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में जो पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11।

प्रोग्राम में पेश की गई है। हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। सरो मीठे की गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं।

अदनान सामी और श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

और रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

में रिलीज किया गया है। उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार अदनान सामी और महालक्ष्मी आयर की आवाज में फिल्म खुशबू का गीत पेश किया जा रहा है। जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। मोहम्मद इरफान एट द फिल्म किक ये गाना पेश किया जा रहा है।

सब ही सिद्ध वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति प्रोग्राम में

मोहब्बत कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के बाद सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, पहली नजर का पहला प्यार। फिल्म का नाम उसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना पेश किया जा रहा है सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरों मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। अभिजीत की आवाज में आज की प्रोग्राम में एक और खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है फिर

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई है अभिजीत की आवाज में, अभी आपने सुना रेडियो SBS की जरिए ये खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। एक गीत अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है खासतौर पर उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में।

आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।

पास में अभी आपने सुना खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड की जरिए कंप्यूटर की जरिए आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें भी होते हैं, मौसमी समाचार और अपना दाह होरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र के लिए जरूर आप उसी वेबसाइट पर जाइए।

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू और

रेडियो SBS की इसलिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरों मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अब की बार एक गाना की ओर आपको हम ले चलते हैं। उदित नारायण की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है उदित नारायण की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। उदित नारायण और देखा जाए अलका याग्निक भी होगा।

और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर। उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। फिल्म का नाम था आखिर क्यों। अमित कुमार और लता जी की आवाज में गाना पेश की गई है। अब की बार मोहम्मद रफी और

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है रेडियो SBS.NL। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम दुनिया की कोने कोने में बस सुनाई देता है। मोहम्मद रफी और लता के बाद किशोर कुमार एंड लता होगा।

गाना जो पेश की गई किशोर और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए फिल्म हम झोली की ओर, सॉन्ग बाय मोहम्मद रफी एंड लता। आज की प्रोग्राम में खूबसूरत गाने खूबसूरत नखमे आप सभी के लिए पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है हम झोली, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म का नाम हम जोलिए, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारी बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और अपना अपना रिएक्शंस भी देते हैं। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और लता की आवाज में ये गाना जो पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गए, दिल में क्या है। तो फिल्म जिगरी दोस्त, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। चले किशोर एंड लता की आवाज में आपके बार ये गाना पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। शहर उत्रेख हॉलैंडीज का सबसे खूबसूरत शहर से ये आवाज बस निकलते हैं। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, फिल्म का नाम काला पत्थर।
1: सांसों में तेरी

एक गाना जो पेश की गई फिल्म का नाम काला पत्थर, उसी फिल्म से मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे लता की आवाज में ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चलिए एक बार फिर से लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। साथ में होगा मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी और लता की आवाज में फिल्म तलाश का गीत पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352565566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशिली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशिली क्रमलाल, तो यू वार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

कौन मैं? हाँ तुम, बस तुम। ओफो, वॉज आउट द फिल्म अजनबी एंड आउट द फिल्म चौदह फेरे कंठ सौंधो रेखा भारद्वाज राम सीता संग द्वारे।

मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे, राधा कैसे न जेले बस अर्द फिल्म लगान। एंड अर्द फिल्म प्यार तूने क्या किया कॉम्थ सॉन्ग दौर सोनू निगम एंड अलका याचिनिक द टाइटल सॉन्ग।

सुना है तेरे दिल पे मेरे, कहीं ना कहीं नाम लिखा है इसका सॉन्ग दो श्रेया घोषाल एक वाम आउट द फिल्म सनक, आउट द फिल्म टाइगर जिंदा है कम दाग सॉन्ग दो आतिफ असलम दिल दिया गल्ला।

फिल्म गुड न्यूज से आपने सुना बी प्राक की आवाज में माना दिल गाने के बोल थे, और अब आप सुनिए शमशाद बेगम की आवाज में कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर।

तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आपने सुना मन्ना दे की आवाज में बेहतरीन गाना फिल्म सीमा से, और अब आप सुनिए आतिफ असलम की आवाज में। गाने के बोल है तेरा हुआ और फिल्म का नाम है लव यात्री।

ये लो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे। गीता दत्त की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म आर पार से। ये है प्रोग्राम गीतों के लहर रेडियो SBS के जरिए से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। गाने के बोल है निमोड़ा निमोड़ा। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सुनिए ये बेहतरीन गाना।

मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम, बस अयोध्या फिल्म हमको दीवाना कर गए। अयोध्या फिल्म फना कोमदा खसंग दौर कैलाश खेर एंशान चांद सिफारिश जो करता हमारी।

तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी।

अभी अभी आपने सुना के की आवाज में फिल्म जिस्म दो से, और अब आप सुनिए फिल्म शोर इन द सिटी से श्रेया घोषाल और तोची रैना की आवाज में साइबो।

गुलाबी स्काई, फिल्म द स्काई इज पिंक से आपने सुना। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए दिल विल प्यार व्यार से। हरी हरन और अलका याचनिक की आवाज में आप सुनिए तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं।

0: बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देख के। बेहतरीन गाना आपने सुना फिल्म तरकीब से, जगजीत सिंह और अलका याचने की आवाज़ में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म दिलविल प्यार व्यार से आप सुनिए, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम।

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना फिल्म खुदा हाफिज से। आप हमारी जान बन गए, मिथुन, विशाल मेहरा और अजीज कौर की आवाज में। और अगला गाना रेडियो SBS का प्रोग्राम में है फिल्म ऐतराज से। उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुनिए गीला गीला गीला दिल गीला गीला।

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफ़र है। धड़क आहिस्ता है ये दिल, मोहब्बत का सफ़र है। कम uit de film Jogger's Park. Gaan we dan verder met uit de film Reis. Gezongen door Pauni Pandey komt Leila met Leila.

मैंने सोचा ना हो इतना प्यार करो। दिस प्रachtig liedje is gezongen door Shreya Ghoshal en kwam uit de film The Body. En हमने सुना है इस volgend liedje via Radio SBS uit de film मेरे यार की शादी है, gezongen door Udit Narayan, Alka Yachnik, Sudesh Bhosle en Jasbinder Nerula is dit liedje in het programma गीतों के लहर।

गुर नालो इश्क मिठा इस आर द फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एंड गजोंगा दोर लता मंगेशकर कम्त आर द फिल्म आरजू अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मेरे हाथ में तेरा हाथ है इस आई द फिल्म फना एंड आई द फिल्म रूही आप साइज़ इट फॉर होंट लीजिए फिर रेडियो एसबीएस किस्तों।

0: मुख्तार जी कहानी अभी खत्म नहीं करते हैं।
1: नहीं
0: करना चाहिए ना,
1: इतना इतना खूबसूरत गाना है। हाँ। तो इतना और इतना जब खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है तो इस गाने का एक बीच का अंतर जो हमने नहीं गाया है वो हम सिर्फ कीबोर्ड का सुर लेकर गाते हैं और जो मुखड़ा है आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महान कलाकारों को होगी।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।